0: ये तब विकेट टेका गया इनके कंधे में लखनऊ के सिहार लिस्ट का ही विकेट देखा है है भाई तामा मंदना इन्नो
1: है मंदना इन्नो अलग है इन्नो
0: मंदना लखनऊ है तो तूने

श्रीलंका खंडा में फल विद विकेट बिंद बैठे नेला लाखों विषय देखा है खड़ल एक अभी बल वो मुकाद बेन्ने की दबिया निमेश चमरी ताम पंदर पहार दिन

0: दशमपहा अनुतुनाय दशमहाता लखंड रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकीय हंड
1: विलापसुरखाए
2: विलाव ओपवेत किन आवे
3: वार्ता पिट वार्ता तबने कोटी अटे एनएलबी दानडे दाने लुतराईयन रटे संवर्धने ट तेवंत शक्तियक वेमिन ओबत दिनवा रटत दिनवत दानने दाने बिलदीगेन ओबत कोटीपतिय कुवन

0: दशमा पहा अनुतुनाय दशमा हाता लखंड रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकिया हंड
1: विलाब सोसतुनाय
2: विलाब ओपवेत किन आवे
3: वार्ता पिट वार्ता तबने कोटी अटे एनएलबी तनडे तहने लुतराई इन प्रति संवर्धने ट तनंत शक्तियक वेमिन ओबत दिनवा रटत दिनवट तनन निदहने बिलदी के ओबत कोटीपति कुवन